में गहे विपरन की रीत मैं ना करूं इनकी प्रती। जदू ए खालसा पंडतां दियां रीतां ते तुर पिया भाव अपने असूलां तो जदों ए पिछे हट गया ते फिर ए दे विच मेरा तीज नहीं रहेगा, फिर इन्हां दा राह वखरा ते मेरा राह वखरा होगा। मैं खालसे दे विच उदों तक हां जदों तक खालसा मेरे असूलां ते रहेगा, ते जे इन्हां दा असूल कोई नहीं ते फिर ए मेरे कोई नहीं। आखो सतनाम श्री वाहे, क्योंकि गुरु साहिब जी जो कहिंदे हन पहला ओ ते फिर रहतनामे संसार दे विच पीर पैगंबर ते बड़े हुए, पीर पीर रहे, सेवक सेवक, भगवान भगवान रहे, पुजारी पुजारी, पर गुरु नानक दे कार गुरु चेले बन गए ते चेले गुरु बन गए। आखो सतनाम श्री वाहे। और इथो

मरूं जे रस ना पाऊं, मेरे शरीर ते जिन्ने रोम ने, एक शरीर ते करोड़ा रोम होंदे ने। जिहड़ा साडा शरीर है करोड़ा रोम होंदे हन हर बंदे दे शरीर ते। ते साहिब जी कहिंदे ने इह जिहड़े मेरे शरीर दे रोम ने करोड़ा रोम, इह सारे जीव बन जाण। रोम रोम जे रसना पाओ तदप खालसा जस तै गाओ। इतनी वड्याई दित्ती, मेरे शरीर ते जिन्ने रोम ने ये सारे जीव बन जाण, ते इन्हां करोड़ां जीवां दे नाल मैं खालसे दा जस गावां। आखो सतनाम श्री वाहिगुरु। ये वड्याई दे रहे।

इतनी बड़ियाई दी थी और इतों तक चले गए। कहन लगे खालसा मेरी जान की जान। और इस तू पहली पंक्ति खालसा मेरो पिंड प्राण, खालसा मेरी जान की जान। पिंड कहंदे ने शरीर नू, खालसा मेरा शरीर है, खालसा मेरो पिंड प्राण और खालसा मेरे प्राण है और खालसा मेरी जान है। खालसा मेरा मां बाप है, खालसा मेरे भैन भरा है, खालसा मेरे रिश्तेदार और खालसा मेरा सज्जन मित्र है। और इथों तक कह दिता गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज का सारा इतिहास पढ़िए। उन्होंने किधरे कसम नहीं खाधी, पर जद खालसे की गल आई तो गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज ने खालसे वास्ते एक कसम खाधी। की कहते हैं, पार ब्रह्म गुरु नानक साखी। मैं पार ब्रह्म गुरु नानक नु साखी रूप जान के ये कहना कि खालसे विच अकाल पुरख विच ते मेरे विच कोई फर्क नहीं।

जिन्ना चिर ये परिपूर्ण परमात्मा अकाल पुरख के चरणों नाल जुड़िया है, मेरा खालसा ये मेरा ही रूप है। पर जदों ये भरमा विच वहमा विच पै गया, गुगे जठेरे मनन लग पिया, मड़ी मसाणी मनन लग पिया, इहदे मन विच द्वेष आ गई, इनू ए पता लग

0: ईएन म्यूजिक पेश कर देने शब्द गुरबाणी गुरु रामदास राखो सरनाई।
1: गुरु रामदास राखो सरनाई।
0: भाई किशन पाल सिंह जी दी रसपिन।

बहुत प्राचीन मधुर और परमुख रागों विचों एक है। इस विच ऋषव अते धैवत अति कोमल अते होर सुर शुद्ध लगते हैं। वादी स्वर धैवत अते संवादी ऋषव है। इसके आरोह अवरोह विच सत सुर लगते हैं। अमृत वेले तो पौ पटाले दे समय दौरान यह राग गाया जाता है। इस राग की मधुरता ऋषव अते धैवत दे उचित प्रयोग ते निर्भर है। पैरों का वातावरण अति सुहावना हुंदा है। प्यार उपजाऊ है। इस राग विच भगत प्रहलाद जी की कथा का जिक्र गुरु साहब ने विस्थार नाल कीता है, जिसने हरनाक्ष का हंकार भन्निया। गुरु की करणी बारे फरमान है, मृग पकड़े बिन घोर हथियार। इत्थे ही नामदेव जी की सूरमताई का भी जिक्र है, जिन्हां मां नूं कह दिता सी ना हो तेरा पूंगड़ा ना तू मेरी माए। बीबी जसविंदर कौर जी पासों शब्द सरवण करो। गुर जैसा नाही को देव, जिस मस्तक भाग सो लागा सेव। अते दूजे शब्द दा गायन कर रहे हन भाई रविंदर सिंह जी। शब्द है माथे तिलक हथ माला बाना। पहला शब्द गुर जैसा

गुरमुख बिरले जाने। ये पंक्ति जिस सारे शब्द का केंद्रीय भाव है, भगत जी दसते हैं कि जो मनुख अपने आप नूं गुरु के हवाले करके नाम सिमरदा है

सतगुरु कोट पेंडा आगे हुए लेत हैं। यू टेक वन स्टेप टूवर्ड्स द सोर्स ऑफ ऑल एग्जिस्टेंस, वाहिगुरु परमात्मा। टेक वन स्टेप टूवर्ड्स हिम एंड ही टेक्स अ मिलियन स्टेप्स टूवर्ड्स यू। यू डू सेवा इन हिज नेम, डू चैरिटी इन हिज नेम एंड ही रिवॉर्ड्स यू 1000-fold. You repeat his name again and again, and he will always be with you. Nanak Pavitra Ravidas says, I repeat his name again and again, and I never get tired of repeating his name. Satgur Dayanid Mehma Agad Bodh Namo Namo Namo Namo Net Net Net Hai.

अपनी शक्ति नाल वो जेड़े लोटे वेच लोग पैसे पा रहे सन वो लुका दिता। भाई साहब भाई गुरदास ने बड़ी प्यारी बात कही,

हे नानक जी ये गल दसो, एक पासे ते तुसी उदासी पेख तारिया पे, एक पासे तोड़े बाल बच्चे तोड़ा परिवार तुसी ग्रिस्ती हो।

फिर उन्हों के घर मंगन जाई, बिन दिते किच हाथ न आई। ए सुन बचन जुगीसरा, भाई साहब कहते हूं झगड़ा कर लगे ने, गुरु नानक नु डराउन लगे ने, अपनी शक्तियां दा प्रभाव पाता।

पर चढ़ पए। रिधियां सिद्धियां दे मालक बने बैठे सन, गुरु नानक नु डरा रहे सन। भाई गुरदास कह रहे हैं

बाबा जी जिस वेले मुल्तान गए ना ते उथे दे पीरा नु पता लगा के वटा पीर आया एदे अगे साडी दाल नहीं गलनी ते उन्हां ने अपने एक सेवक नु अपने चेले नु एक दुध दा छन्ना भर के भेजिया जिदा मतलब सी भी पीरीपुर मुल्तान इथे तेरी लोड़ ही नहीं इथे अगे पीरा नाल भरिया पिया तेरी की लोड़।

0: बिन कुंभ न हो। ज्ञान का बधावन रहे गुरु बिन ज्ञान हो। ओ गुरु बिन ज्ञान हो।
1: पापा जी थोड़ी इस छबील के आसरे साडा पेंडा कटिया जाता
2: आसरा उस आधार का मैं देख सेवादार हाँ।
1: खुश रहो बाबा जी खुश रहो।
2: आप उधर ले पी। ओ ले पी।
3: जल पाया परमेश्वर पाया
2: अब मोहे जलत राम जल पाया। राम अधिक तन जलत बुझाया मन मारण कारण बन जाइए सो जल बिन भगवंत न पाइए।
4: सो जल बिन भगवंत न पाइए।
2: हाँ बेटी।
4: बाबा जी असी भी मन में जल लग रहे हैं थोड़ी कुल के हजारे यात्री आते जाते शायद तुम्हें कुछ पता हुए।
2: कादा पता
4: ए मेरे पति ने इन्होंने सुपने विच एक थां वेखी सी पानी दी छपड़ी आदि कंडे ते बेरी दा दरख्त ते बेरी ते कां बैठते ने
2: छपड़िया ते कई ने ते बेरी दे दरख्त भी बेअंत हैं।
4: नहीं बाबा जी आज बेरी ते इक्को ही होएगी जिस तो कां उड़ के छपड़ी च डुबकी लैंदे ने ते चिट्टे हो उड़ जांदे ने।
2: चिट्टे हो उड़ते जांदे ने।
3: हां बाबा जी ते नाल ही आवाज आ रही सी
4: कागू हंस करे।
2: कागू हंस करे। कागू हंस कर ए तां गुरु नानक देव जी दी बाणी है। तुसी इंज करो सिर्फ गोंदवाल चले जाओ उत्थे गुरु अमरदास जी दे दरबार है गुरु नानक दी अलाई बाणी दा सोमा।
4: गुरु अमरदास।
2: हां बेटी उन्हां नूं हर चीज दा ज्ञान है। उन्हां ने दर्शन करदे ही तुहाडे पैर अपने आप तुहानूं उस मंजिल वल लै जाणगे जिस मंजिल ही तुहाडे दिलां च तांगे।
4: किन्नी दूर है गोइंदवाल।
2: इथों थोड़ी दूर दरिया का पत्तन है उत्थे बेड़ी पैंदी है बस दरिया पार ते गोइंदवाल।
4: अच्छा बाबा जी असी चलने हैं।
2: परमेश्वर भली करेगा। कबीर सेवा को दोए भले एक संत एक राम। राम जो दाता मुक्त को संत जपावे नाम।
0: उठ परी दायूज साज सुबह नवाज गुजार जो सिर साई ना निवे सो सिर कफल उतार। जो सिर साई ना निवे सो सिर की देखाए उन्ने पैठ चलाए बालन संदे थाए बालन संदे थाए।
5: ओ साथ जी की गल है पहला तुसी ने कहा दिता।
4: असी असी किस तरह जानते सोच लिया पहले पूछ लिया होंदा।
5: की पूछना सी।
4: सारे मुसाफिर ने तुहाडी सेवा कुछ ना कुछ भेंट किया पर असी साडे कोल ना दिल चौल ना धर्म ना तमड़ा।
5: ओ चलिए पहले मैं कोई कम कमाइया लई तो नहीं करता मैं तो गुरु के दर्शन आई हूं संगतां की सेवा करके अपना जन्म सफल कर रहा।
4: फिर भी तुहाडियां लोड़ां।
5: मेरियां लोड़ां। मेरियां लोड़ां तो खुदावंद पूरियां करता है तो होर मैनूं चाहिदा वी की जो कुछ मैं लोग दे जांदे ने जाके गुरु के दरबार च चढ़ा दिना दिन वेले बेड़ी चलाना तो राती लंगर चो ढिड भर के बाहर थले दसो जाना। मैं उगन हारा कोगन पले नाही।
4: धन हो तुसी।
5: तन ते मैं नहीं पैना तन तो गुरु महाराज है जिहड़ा सब नूं अपनी मिठी बाणी दा अमृत पिलांदा है। उहदे दर ते जाओगे तो उहनूं कहना जिन्हें सानू ए सागर पार कराया उस औगन हारे नूं इस पाव सागर तो पार उतारो।

राय जी ने पछाण लिया ए ता मेहता कालू पटवारी दा पुत्र है। आख्या नानक तूवे क्यों कीता? आख्या मैं ता उस प्रभु दे रंग विच बैठा सा, मैनू नहीं पता। मैं ता कालू नू सदिया। मेहता जी जदों आए राय ने आख्या वेख वही तेरे पुत्र नानक ने गाइयां मजियां

है ना ओ मैं जप रहा हूं। गुर प्रसाद जप आद सच जुगाद सच है भी सच नानक उसी भी सच। हे निरंकार तू आद विच भी सच है जुगाद विच भी सच है हुण भी सच है ते सदा तेरा नाम सच ही रहेगा। ए उपदेश लेता इत्थे गुरु नानक सच्चे पातशाह जदों वेही नदी विचों बाहर ना निकले मर्दाना डरिया के गुरु नानक सच्चे पातशाह किथे गए। बाला भजिया बेबे नानकी दे कोल आया कहन लगा बेबे पाया जी किथे।

कितनी देर हो गई बाहर ही नहीं निकल रहा। सिपाही जय राम घबराया, बेबे नानकी दे कोल आया ते कहन लगा नानकी तेरा वीर वेई विच डूब गए। बेबे नानकी प्रतीत वाली सी परोसे वाली सी कहन लगी इवें ना आखो मेरा नानक संसार विच डूबन वास्ते नहीं आया ओ तां कईयां नूं तारन वास्ते आया है। नानक कदे डूब नहीं सकदा ओदा जरूर कोई कौतक होवेगा कम होवेगा किसे कम नूं गया होवेगा ओ जरूर आवेगा। और समा पा के जदों निरंकार दे कोलों उपदेश लै के गुरु नानक सच्चे पातशाह वेई विचों निकले।

हरिद्वार जा पहुंचे। हरिद्वार दी जो पवित्र धरती से पहुंचे ते की वेख्या उथे दे लोग कर्म कांडा विच पए हुए। एक पंडित सूरज वल मुंह करके ते गंगा जल पाई जाऊंगे। ताई साहब जी ने भी गंगा विचों एक लोटा लिया ते आख्या पंडित जी आ की कर रहे हो। पंडित कहिंदा जी मैं सूरज देवता नू जल दे रहे। साहब जी कहन लगे अच्छा आ पूर्व वल करके पंडित जल दे रहा है सूरज नू ते गुरु नानक ने पश्चिम वल मुंह कर लिया ते लोटे दे नाल जल पाना शुरू कर दिता। सतसंगत बोलो श्री। पंडित कहन लगा सूरज इस पासे है तो

परमेश्वर दा नाम नहीं जपोगे और कर्म कांडा विच पाओगे ता इना कर्मा कांडा ने तुहाडा उधार नहीं करना। उधार ता प्रभु दे नाम ने करने। सात सिख बोलो श्री बाबा नन सिंह जी महाराज कलेरां वाले पूर्ण ब्रह्म ज्ञानी आप क्या कर दे सन भाई आ दुनिया दे जितने कर्म कांड जप तप हन ना ये सारिया सिफरां हन सिफरां ये सारे जीरो हन और बेशक एक कागज उत्ते जितने मर्जी जीरो पा दे उना दी कोई भी मुल नहीं है जब तक उना दे अगे एका ना पवे जे एक पावेगा एका लिखेगा और उस तो बाद जीरो पावेगा ते दस बन जाएगा दो जीरो पावेगा सौ तीन पावेगा हजार इसे तरह दुनिया दे जितने कर...

जे परमेश्वर दा नाम होया तेरे कोल ता उना कर्मा कांडा दा वही मुल पैणे सत सगत बोलो श्री जिवें एके तो बिना उना सिफरां दी कोई मुल नहीं इसे तरह एक प्रभु दे नाम तो बिना जो कुछ मर्जी करदा रह कदे थाए नहीं पवेगा तेरा। गुरु अर्जन दे पातशाह बाणी विच कहंदे हन प्यारे इन बिद मिलन न जाई मैं किए कर्म अनेक।